0: मानते ऐसी निर्मल चांदनी जैसी उपमा महिमा जस गुरां दा घर घर फैलिया है।
1: मनो मालती फूलत झूले राय बेल कै सुंदर फूले।
0: मानो ये खुशबू वाले जिहड़े फुल ने मालती दे राय बेल दे फुल चिट्टा रंग खुशबूदार होवे गुरां दा इउं उज्जल जस सोहना खुशबू दे संयुक्त सारयां दे विच फैलिया जिहड़े चंगे तुरक सी चंगे हिंदू और चंगी दुनिया उन्हां ने माड़ा नहीं कहा। सब लोगों ने सतगुरु नूं सलाहिया कि सतगुरु जी ने यह कर्म बहुत चंगा कीता है।
1: जै कै कीरत वर्णन करते तन तन प्रभ तन उचरते।
0: जिथे किथे महाराज की महिमा हो रही है बहुत खुश ने सारे कि अन्या हुंदा सी धरती ते डाकू चोर ठग राज लुकण वाले उन्हां तों दुनिया नूं बचाया महाराज ने पहाड़ियां ते तुरकां दे जुल्म तों बचाया धीआं भैणां दी इज्जत बचाई। आईयों सारी दुनिया कहिंदी धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज।
1: जो पए इक दिन सतगुर चढ़वो चयो बाजी के सेवक संग कयो।
0: अगला प्रसंग सुनाउंदिआं कवि जी कहिंदे इक दिन सतगुरु महाराज ने चाहिआ कि जिहड़ा नवां घोड़ा आया है कपूरे ने भेजिआ है उहदे ते सवारी करनी चाहीदी आ। उह ख्याल करके सेवादार नूं कहा।

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल विदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल विदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हूं चंगिया निहारियां खवाइया चंगा घ्यो आदक जा देना या मिठा पा के देना ऐसिया निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई ओ सोहनी काठी पाओ ते ओदे गले दे विच जिहड़ियां हमेला हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा ले आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ए तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए तैयारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मन के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के, इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नामिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव के सगै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेडे घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर चढ़न लगे,
1: उछलियो घोड़ा बल को भरियो, ने आसन पर श्री प्रभु थिरियो।
0: घोड़ा उछल गया उस वक्त, छाल मार गया। उस वक्त सतगुरु महाराज फिर घोड़े उत्ते असवा

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नू हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नू भजाउणा, सूरज वल नू मूह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जाता है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नू भजा के फंदाया, चंगी तरह छाला भी मरवाइया, वो घोड़े नू भी पता लग जाता है कि बंदा तकड़ा जेड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धि सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नू भी पता लग गया कि मैनू किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नू इस तरह घुमाउंदे होए आके उतरे महिलां दे सामने, माता जी

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैना करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: महाराज ने कहते यह कहेजे सिंह तुम खड़े किए उसे दरवाजे से मूहरले पासे पहरे से वो सारा दान ये को खो लिया है इन्नी कादी इच्छा जाग पई उन्होंने
1: आवन जानो बंद करते दिज आदक सर संग
0: तो इस कृपा कहते आना जाना ना सारे ना बंद करता आप ब्राह्मण ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे ये कोई चंगी गल है या महाराज सच्चे पातशाह नु सुना रहे हैं
1: कहे सुने मैं किसके नाई उचित अनुचित लख न सकाई
0: अरे थोड़े सिंह बारे ही हुंदे जांदे ने ये तो किसी के कहे सुने च नहीं है ये तो ना योग अयोग जानते ने तो इस प्रकार के नाल हुण सिंह तो महाराज के सूल ते चलणगे जो सिंघा नूं हुक्म आ सी तां ओह कम करना हुण माता जी कहिंदे मेरे अखे नहीं लगदे वो जिवें पिछे जे माता जी ने एक बारी अपनी मर्जी नाल ही कहता आखे लंगर एक टाइम कर दिओ मसंदा ने जाके डराता माता जी काल पै गया चारे पासे बई हुण तां बड़े लोग आ गए हुण तां अपना अन्न मुक जावेगा आपां वी भुखे मर जावांगे माता जी ने सतगुरु जी नूं कहण दी बजाए सीधा ही हुक्म करता भी लंगर एक टाइम कर दिओ जदों महाराज कोले खबर गई तां महाराज ने माता नूं पुछया माता जी ठीक असीं थोड़े साहिबजादे हां पुत्र हैं पालिया ठीक है पर गुरता गद्दी दे मालक हां हुक्म संगत उत्ते थोड़ा नहीं चल सकता तुसीं किहनूं पुछ के लंगर इउं कीता इह तां एक वो गल होगी कि बेसिदकियां वाली गल होगी महाराज ने कहा कि रोज तो तुसीं पढ़दे हो काहे रे मन चितवै उद्दम जाहर हर जीव परिया सैल पत्थर मैं जंतु पाए ताकर जगाग्या कर धरिया माता जी तुहाडा अपना स्थान है सत्कारयोग है पर तुसीं अपनी मर्जी नाल कोई बचन ना करिया करो फिर काफी महाराज ने वीर रस विच आके बचन भी करते मसां बख्शाए सी सो इस करके हुण भी माता जी नाराज ने कहिंदे इह तुहाडे जिहड़े सिंघ ने इह अपनी ही मनमर्जियां करदे ऐ
1: श्री सतगुर ऊचे बोल मात के सुने श्री सतगुर श्री मुक्ते भने
0: जदों माता जी दे उची उची बोल सुने तां उस वक्त सुभायमान मुख विचों गुरां ने इस तरह वचन कहा
1: मात कोप के सन अस कीना हुक्म तुमारो को ने चीना
0: सो उस वक्त माता जी कादा गुस्सा कीता है तुहाडे हुक्म नूं जाणिया नहीं है किसने नहीं जाणिया इने तुहाडा हुक्म मन्या दसो मैनू
1: सुन सुत ते प्रसंग कह दयो तौ सिर सदका बिपरन लयो
0: सुन के अपने साहिबजादे भाव दसवें पातशाह तो माता जी ने सारी गल सुनाई तुहाडे सिर सदका मैं ब्राह्मण नूं दान दिता सी मैं सारिया चीजा ब्राह्मण नूं दित्तियां सन
1: ले जात सो सिंगन छीने उदम किन्ने
0: देखो किन्ना उपद्रव किया उन्होंने निसंग होके आ सारिया चीजा उन्होंने खोलिया ब्राह्मण दे पासों
1: श्री सतगुरु

0: सिर पर शत्रु प्रबल विचारू।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र हजूरी सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आओ प्यार सत्कार सहित पते उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार प्रसंग के सरवण कर रहे हाँ। सतगुरु महाराज सचे पातशाह श्री आनंदपुर साहब विखे आ के सजे हैं, संगतां नूं बहुत बख्शिशां कर रहे हैं। सो इस तरह बहुत सारिया मर्यादावां सिखाउणियां सिंघां नूं अते देखना कि सिंघ किन्ने कु सुचेत होए ने अगे नालों। ऐसियां साखियां सरवण कीतियां सोहणियां, पहाड़ी राजां दा प्रसंग प्रारंभ होया है। बहुत दुखी होकर भीमचंद ने सारे राजां चिट्ठियां पा के बुला लिया है, आपस विच विचार कर रहे ने कि महाराज दसवें पातशाह नाल जंग आपां नूं करना चाहिए, मिलकर बड़े प्रबल दुश्मन ने अपने, नहीं कल नूं अपना राज खो लैणगे दबा लैणगे आपां नूं। सो इस तरह दीआं विचारां करन लई इकट्ठे होए ने, आओ सत्कार नाल इतिहास श्रवण करिए, रसना करिए, पवित्र गज के आखो सा

वक्त कहण लगे सिंह महाराज पहला ही क्यों ना चली अगे चल करके पहला तो ही आपू अपने मोर्चे मलने चाहिए ने जरूरी तो नहीं भी नेड़े आने लड़ना आप।

0: सच्चे पातशाह हे महाराज तुहाडा ही पंथ है हुण पंथ की कटिया हो रही है भाव कट वड हो रही है पंथ हुण हार रहा है पहला नहीं सी दिखिया महाराज कहते जद असी बचन किया उदों तुहानू याद नहीं आए असी ये छत्र छाया ही ठीक रहिंदी गुरु साहब की जे छत्र छाया छड दिए फिर लोग चारे पासों पै जांदे हन
1: क्यों ना संभारत हट पिछवाई कौन खता इनके घर पाए
0: महाराज केड़ी गलती होगी सातों क्यों नहीं तुसी पिछे हटदे क्यों नहीं साडी मदद करदे
1: जेकर सिंह है अवगनियारे तौ आपके जगत उचारे
0: जे सिंह अवगनियारे ने ता भी जग ने तो होर कुछ नहीं कहना जग तो फिर भी यही कहेगा कि कलगिया वाले थे सारे सिंह ने
1: इत्यादक बोलत समदाए मिले आन को हैन तवाए
0: तो इत्यादक सारे बोलते ने तो घोड़िया नु भजाउंदे ने कि महाराज नु मिलिए
1: करत पुकार सो आए कनेरी हित हेरन गुर ग्रीव न फेरे
0: भजाउंदे ने घोड़े आपो अपने मगर मगर महाराज तेज घोड़ा भजा रहे ने पर सतगुरु जी ने पिछे नु अपना मुख कीता ही नहीं है कहंदे मैं नहीं रुकना हुण
1: कहे बहुत प्रभ छिन पर थिरो लड़त पंथ अवलोकन करो
0: बड़ा कहा महाराज एक छिन लई टिक जाओ सिंघां नु देख लो सिंह किवें जंग कर रहे ने घिर गए हन
1: कह जब रहे खरे न होए नौरंग सिंह मिलियो प्रभ जोए
0: जदों बहुत कहा महाराज रुके ना एक भाई नौरंग सिंह सीगा उन्हें उस वक्त महाराज नु देखिया ते घोड़ा भजाया
1: तुरत तुरंग उतरियो अगवाए ऐच लकीर गई सहसाए
0: भाई नौरंग सिंह ने महाराज जी तो किन्ना ही अगे घोड़ा कढ के छेती नाल उतर के लकीर खिच दिती।

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदान जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्थां दे विच शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। यहां गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना क ना खिचण फिर आपां सीधे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने गुरु के वचनां दे उत्ते पहरा दिता है एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जांदी तां माफी मंग लो। यही दस्सिया है माफिया मंग लिया करो। सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेर करो सातों को गलती हो जाती है सौ गल्लां हो जांदियां ने सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं कई बार साढ़े को ढिलाइया हो जांदियां ने। और सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफिया मंग लईए कि महाराज असं इन्ने योग नहीं हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है युद्ध विच टिक के लड़ो हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम ए वर हो गया खालसे नूं भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है एदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं बहुत वीर रस अखां विच लालियां शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली अपनी गलती का एहसास किया है उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जन दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह
0: इको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी ता के दौड़ के
1: कितक हते को मार हटाए
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग पर हारे
0: ये सारियां इको ही किस्मां बरछे दियां ने तोमर ते सेला ते सांग सोटी का फर्क है उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस कग मारे
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने उह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतरियां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्ग इक बारे
0: बहुत दीर्घ मार मची बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: مر مر پرتے پائے پسارے
0: مر مر کے لمے پی گئے پائے اپنے پیر پسار کے اسی وقت ہی انہوں کا تو بار نہیں چل سکتے وہ جی ایک برچا مارن سو سو بندہ کٹھا ہی ڈگتا ہے
1: جنم لنگ بھگے کو کھائے
0: مانو کہ جی میں

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने?
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने?
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी।
1: पंथ खालसा हो जस थोरा?
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जी है गिनती दे विच।
1: पयत कहो कहो को टोरा?
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है, कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते।
1: सकल सतर को हाथ कर कैसे?
0: सारे दुश्मनां नूं मार करके किस प्रकार?
1: राज पाए किम कहिए तैसे?
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते, ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो फिर पहाड़िए होर राजे, ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जिहा है। ये दसो मेरे मन का शंका भई इन्ने बंदियां दे उत्ते थोड़ा जिहा खालसा किवें राज करेगा?
1: वधे तेज किम लह धरने?
0: तेज इन्ना किवें वधूगा इन्हां दा, किवें धरती सारी तुसीं कहिंदे सारी धरती ते राज करना इन्होंने।
1: ठहरे राज कौन कर करने?
0: इन्हों का राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा?
1: बहुतन की किरत अलप करें किमा?
0: ये बहुतियां दी किरत, बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने काम करना है ये हजार बंदा किवें कर सकता है? मैं तो ये पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है?
1: बन अल्प की बहुतन ते तिम?
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है?
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज?
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा बड़ा है।
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू?
0: सारे दुश्मनां दे उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा?
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा?
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा?
1: हान लाभ जाने इस बेरा?
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा, किस तरह राज करेगा?
1: वरतें वरतारा जग जथा?
0: जिमें जग दे विच वरतारा वरतेगा आने वाले समय च।
1: श्री मुख सुंदर ते कह तथा?
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहने बचन इस प्रकार कहे।
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए?
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित ला के इस गल नूं।
1: सतगुर जैसी भावसी तैसी चलसी वाए?
0: ये तो साडी मर्जी ते हुंदा सारा कुछ, जिवें असीं चाहुंदे आ उसे तरह की हवा चल पेगी, अपने आप ही दुनिया घुम जाएगी।
1: खाएगो खर्च लेंगो लाल?
0: सो इस तरीके दे नाल कहिंदे खाणगे खर्चणगे लएगो लाल। हुण इथों खालसे दे महाराज ने कुछ अर्थ कीते ने जिहड़े डूंघाई विच ने। खाएगो तो खा खर्च खखा ते लेगो तो लल्ला ते लाल, इस प्रकार अगली पंक्ति पूरी करेगी। सरकैगो युद्ध माहे करैगो निहाल, वह सरकै दे सस्से नूं लैणा, ये तीन अखर मिला के बनता जिहड़ा साडा खालसा है। ये खालसे का एक पूरा सतगुरु ने उच्चारण किया इत्थे कि खालसा अगे नूं सरकेगा जंग जितेगा अगे वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा खालसा।
1: सरकै गो युद्ध माहे करो गो निहाल,
0: सरकै गो अगे नूं खालसा सरकेगा वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा।
1: कारी लग लक्ष्मी सिमट सगरी आने सार,
0: खारी तो भाव खारा समुंदर, उस समुंदर तक लक्ष्मी सिमटी जिन्नी कठी हुई है सारी आनेगा सार जंग करके लोहा खड़का के। हुण इन्हां अखरां तो की लैंदे खारी तो खखा खा री छड़ देना, खा लक्ष्मी तो लल्ला, खाल ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
1: ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਲਕ ਕਰੇ ਗੋ ਪਾਰ,
0: ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਖਰ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ
1: ਕਰੇ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ,
0: ਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਬਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕ

0: हो गए।
1: देखत सब दिस दृष्ट चलाए,
0: देखदिया सारे पासे महाराज ने अपनी दृष्टि संगत ते चलाई है।
1: लखो सुभाए खालसे गुरु को,
0: कहने सुभाव की कहने जो खालसा है एक गुरु रूप है अते गुरु खालसा है।
1: बूझो पुन जो संसे उर को,
0: फिर महाराज कहने चंगा खालसा जी हुण जेड़ा संसा सी तुहानू वो तुहाडा दूर करता, होर कोई कोई शंका होवे कहिंदे ओह भी पुछ लो।
1: श्री प्रभ किम वरतै वरतारा,
0: महाराज ये दसो ये जिहड़ा वरतारा आप जी ने कहा है ये किवें वरतेगा।
1: किम भाणा होवे करतारा,
0: ये वाहेगुरु का भाणा किवें होवेगा सानू कुछ जरूर दस के जाओ जी।
1: समय कलो को होए,
0: कलयुग दे समय विच किवें किवें होवेगा वरतारा वरतेगा।
1: वद राज नरप कहीं अनसोए,
0: सो इस करके आप जी ने कहा कि राज वधेगा, राजा खालसा राज करेगा, ये राजे बनगे।
1: हृदय खालसे लालस लहो,
0: खालसे दे हृदय विच ये लालसा है जी।
1: भूत भविखत की गत कहो,
0: आउण वाले समय दे कुछ बचन सानू जरूर सुनाओ।
1: इम सुन सिंघन की अरदास,
0: यों अरदास बेनती जो सिंघां ने की थी कि महाराज सानू दसो आउण वाला समा।
1: श्री कलंगी धर किन प्रकाश,
0: कलंगी धर महाराज जी ने फिर कुछ बचन खालसे दे बेनती करन तो यों प्रकाश प्रगट कीते।
1: 4,32,000,
0: महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे यह 4,32,000
1: कलू आर बल करी उचारा,
0: कहने भाई वेदा शास्त्रा च उम्र कलयुग की इन्नी लिखी है 4,32,000 साल कुल उम्र, हले 5,000 साल ही लंघिया कलयुग, 5,000 साल च गेड़े खवाते अपने सारिया दे, हुण गाहां हले किवें लंघेगा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह खालसा पुछ रहा जी, ये खालसा जी पुछते ने सारे भी ये बनूगा की साडा।
1: जिसमें संत होए ब्रह्म ज्ञानी,
0: महाराज कहते ऐसी नहीं गल है जिदे विच बहुत सारे संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख होणगे।
1: सगरे दोख करें जोहाने,
0: जिहड़े रब दे बंदे होणगे रब दे प्यारे होणगे उह सारे जिहड़े दोष ने दूर करनगे लोकां दे।
1: दोहरा कल दर्शन के कारण उठे प्रांत एक बरक,
0: तो इस करके कल दे कलयुग दे दर्शन वास्ते कहंदे एक बरख एक प्रात भाव अमृत वेले उठो।
1: नगर दूर होए देखिए तब दर्शावे हरक,
0: दूर नगर तो दूर जाके बिठो तां ओ दर्शन करके ए खुश होया भाव कलयुग ने इस ढंग नाल एक साल कलयुग गुरु नानक दे दर्शना नूं सवेरे उठ के तुरिया। भाव पहला तो किन्ना चिर कलयुग नूं दर्शन नहीं दिते, जदों दर्शन करन दी इच्छा करदा सी महाराज ने सोचा भी इहदा भला हो जाणा, भला इहदा असीं करना नहीं, पर फिर बहुत मिन्नतां तरलियां तो बाद कहिंदे इक सवेर उठिया महाराज गुरु नानक देव जी दे दर्शन करन वास्ते आया तां जाके इहनूं किते दर्शन होए।
1: नगन शिशन बातल वपो करना भोजन खाए,
0: पर कहिंदे इहदा जिहड़ा सरूप है ना वह शरीर जिहा जिहड़ा वह चंगा नहीं सी, इह इहो जिहा रहिंदा हर वक्त नगन होण करके इस ढंग दे नाल इक ते हर स्वादां विच फसिया होया, कलयुग आप दी ते दुनिया नूं वी फसाउंदा स्वादां दे अंदर। जां तां खाणा जां विशे इह दो कम ने कलयुग दे, जां तां मूंह दे स्वाद ने जां विशियां दे स्वाद ने, आप भी इहनां च फसिया होया ते कहना मेरी परजा भी खाओ खाओ 24 घंटे खाई जाओ, जे सुते रहो जां विशियां वकारां जाओ, इस तरह का है कलयुग के दुनिया नूं अपने नाल ही ला के रखिया इसने।
1: नील वसन बोले हसे सह सुभाए निहाए,
0: तो इस तरीके दे नाल सोहणे ढंग दे नाल कहिंदे ने कि प्रेम नाल सहजे ही महाराज सच्चे पातशाह हसे और नील वसन जिहड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए सन नीले रंग दे।
1: दर्शन ते पातक गए मिटी संग सब देहे,
0: हुण दर्शन करन दे नाल जिहड़े पाप सी ये मिट गए और मन दी जिहड़ी शंका सी ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟਣ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣ।
1: ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਵਾਕ ਉੱਠ ਚਿੱਤ ਵੈ ਪੂਰਨ ਲੇਹੇ।
0: ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
1: ਚਾਪਈ ਜਾ ਪਾਂਡਵ ਹਟ ਗਏ ਸਮਾਜਾ।
0: ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਰਾਜ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਾਂਡਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।
1: ਮਗਧ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ ਰਾਜਾ।
0: ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮਗਧ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 1000 ਬਰਸ ਤੱਕ।
1: ਦਿਨ ਪਸ਼ਚਾਤ ਨੰਦ ਕੇ ਰਾਜੇ।
0: ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੀ ਕਟਾ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਮਗਧ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
1: ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਸੋ ਭੁਗਿਓ ਸਮਾਜੇ।
0: ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਨੰਦ ਰਾਜ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਜ ਸਮਾਜ ਭੋਗਿਆ।

0: पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यो कहने समाधि ला ली, गुर चरणा विच समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पढ़ सुने कलयुगता का दास।
0: जेड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा, ये साखी नु सुने, कलयुगो दा दास बन जाएगा।
1: बाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओदे भज जाणगे, भगती ओदे हिरदे जागेगी, तन है गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी, जेड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने वचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नु सोहना सुनाया इतिहास। आने वाला समा मुकदी गल मुकाईए भाई, अमर छको दाड़ियां जेड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहने आपे ही शूद्र बन जाते ने, आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जाते ने, आपे मलेश बन जाते ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग का। एक ही वचन किया कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नू मनो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी ये सारिया चीजा तो विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच, अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा है कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग के जीवां नू शंके बहुते हुंदे ने। शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा, नहीं तो सारे नालों सौखा काम महाराज एक कह देण भी वह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जे बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी, वह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भाई किहने कहा, महाराज जी ने कहा। ये साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए, ये कहण दा की फायदा, फिर की बनेगा, गात्रा पा के की बनेगा, अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों। इस करके विस्थार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो, सारिया गल छड़ दो पर नहीं मानते, फिर भी कहें आह गल क्यों आ, किवें इहदा की लाभ है। पर सतगुरु कहते जे सारे जने एक ही बचन मान लो, उस विच ही भला है। महाराज वो किहड़ा बचन

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग पिठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं गे गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रहा ही नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जेड़ा गुरु घर दा है श्रद्धालु है प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर के प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहने चलो उन्हों का दान एक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है, भाव कहण का सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जाए खंडे बाटे दा अमर छक लवे गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत बलेवा साडा होना चाहिए। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: सुपते निसमय सत गुर मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां नूं उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है, सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है, उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जांदे तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वह बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी, आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वह शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडितां नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी, इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी दे वचन आउणगे, सुते सिद्धी सतगुरु कवियां दी जनरल नॉलेज देखदे ने किन्नी का है, किन्ना कि इहनां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते, कवियां दे ज्ञान नूं परखना उन्होंने जवाब देने ने। उन्हां दे जिहड़े उत्तर ने उन्हां नूं सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे, नहीं असल विच इह गल इस तरह नहीं है, इह गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्हां नूं भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करदे हां प्यार सत्कार नाल, दसना नूं करिए पवित्र गद के आ

0: चीर के उलंघ के साजुज मुक्ति प्राप्त कर लेगा। चारा मुक्तियां विचों सयुज मुक्ति है जेड़ी श्रोमणी।
1: अपनी नारी सच ब्रित खाज अखाजी ब्रित,
0: अपनी नार ते संतोख सच दी विचार या सच दा

0: साहब जी महाराज मुंह पुचरा शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखा बद रो सुने जो काल कृपा कराए बाजा तुहाडा नाम लै लवे ना ओ बंदा कविता रचन लग जांदा जिवें दसवें पातशाह ने कहा सी जदों गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई सारी कथा करती महाराज ने नौ महीने नौ दिन नौ घड़िया नौ पलां विच गुरु की कांशी दमदमा साहब दे विच कहिंदे महाराज जी आह दवात शाही कलम बज गईयां ने इहदा की करना सतगुरु कहिंदे आ लागे जिहड़ा छप्पड़ा इह छिड़ दिओ इत्थे सुंदर एक सरोवर बना दिओ जिहड़ा कोई बंदा मोटी बुद्धि वाला भी इत्थे आ के ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी सस्सा हाहा सारी पैंती अपने उंगल दे नाल इत्थे लिख दिया करेगा रेते ते फिर यह सरोवर च पहला नहावे देख करावे अरदास करे इत्थे पैंती लिख देवेगा वह जिन्ना मर्जी बैल बुद्धि मोटी बुद्धि वाला होवे इत्थे गुरु की कांशी है सरोवर च नहाउण नाल ही विद्वान बन जाएगा उन्हें सोझी हो जाया करेगी। इस तरह सतगुरु महाराज ने तो आप बड़ा कुछ दिता और आप घर बैठे भी बड़ी मौज लगी भी की जाना दमदमा साहब तो यह तो भाई सारे बेनती है कि पहला जो बच्चे ऊड़ा ऐड़ा लिखना शुरू कराना है पहला दमदमा साहब लैके जाया करो उत्थे सरोवर विच इशनान कराया करो तो उंगल फड़ के उत्थे पूरी पैंती उन्हें लिखवा के अरदास करो कि महाराज ये सिख बच्चा है तुहाडा बच्चा है इन्हू विद्या की दात बख्शो इतने इन्ने ने बड़े विद्वान बने ने 48 सिखा ने इतने सिंघा ने कथा सीखी है बधेर मुक्त होए ने इं जे भाई गुरां ने राह दिखाए ने आपां नूं उन्हां रस्तियां उत्ते चलण की लोड़ है। तां कवि कहिंदा जिहड़ा धन गुरु गोबिंद सिंह कह दिंदा ना वह अपने आप ही कविता रचन लग जांदा है।
1: तब कलगीधर बात सुनायो तन्ना सिंह जो तोए बनायो
0: महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे चंदन कवि दे बाहरों का हंकार ठीक हो गया है अंदरला हंकार नहीं दूर होया। महाराज ने इशारे नाल कहा भाई तन्ना सिंह इन्हें तो अपना सवैया सुना दिता है वह जिहड़ा सवैया एक तू बनाया जरा वह तो इन्हू सुना लिया इन्हू पुछिए तू आदे अर्थ करके सुना बई आप इन्हू भी तो पुछ लिए चंदन कवि नू पुछिए तेरा दिमाग किन्ना का बुद्धि किन्नी का एदी परखे लै लईए जरा
1: सो पट इस ते अर्थ करावो सुनो भले पुन आप सुनावो
0: महाराज कहने सभा च सुना बई एदे कोलों अर्थ सुनदे हैं ते जे ना आउणगे फिर आपां सुनावांगे सारयां नूं संगत वी सुण लवे
1: सभा विखे जा सतगुर कहियो आशय सकल सिंह ने लयो
0: जो सभा विच महाराज ने इउं वचन कीता भाई धन्ना सिंह इशारा समझ गया कि महाराज जी चाहते नहीं इहदा हंकार हले पूरी तरह दूर नहीं होया हंकार नूं जड़ों पुटना है ताकि अगे वास्ते हंकार ना करे
1: कथो अर्थ जे कर लख पायो मैं सवैया करो सुनायो
0: उस वक्त कहने अर्थ तू कर बई इस तरीके जरा सवैया सुनाया है तो उस सवैये के अर्थ दो सवैये ने उभय तो भाव दो सवैये बनाए ने उन्हों का अर्थ चंदन कवि तू सुना तेनों मूल पाठ भाई धन्ना सिंह सुना दिंदा है।
1: सवैया मीन मरे जल के परसे कबू न मरे पर पावक पाए हाथी मरे मद के परसे कबू न मरे तन ताप के आए तिया मरे पिया के परसे कबू न मरे परदेश से आए गुड़ में बात कई दिजराज विचार सके न बिना चित लाए कौल मरे रब के परसे कबू न मरे सच की छब पाए मित्र मरे मित के मिलबे कबू न मरे जब दूर सिदाए सिंह मरे जब मांस मिले कबू न मरे जब हाथ नाए गुड़ में बात कई दिजराज विचार सके न बिना चित लाए।
0: सो इस तरीके नाल दो सोइए ने इन्हां दे विच इक कुंडी है ऐसी कुंडी जेड़ी किसे बंदे नूं समझ ही नहीं पै सकदे जिवें उन्हें तां 16 दा ही बनाया सी ना इत्थे इस ढंग नाल भाई धन्ना सिंह घाई ने लिखिया है मीन मरे जल के परसे कबहू ना मरे पर पावक पाए कहिंदे पाणी नहीं जिहड़ी मच्छी है ना

0: अत्यंत ही भैड़ा सुभाव पलटन वास्ते भूत प्रेत डाकनिया हुंदियां ने जिहड़ियां अथवा डीठ हुंदी नजर लगनी ये मसले आम तौर ते दबा दिते जांदे ने ये कोई चीजा नहीं हुंदियां ये फालतू गल्लां ने पर फिर लोग उधर नूं क्यों भजदे ने सो ऐसियां चीजां दा प्रभाव गुरबाणी अंदर गुरां ने मन्निया है जदों गुरु ग्रंथ साहिब दी कसवटी ते सब चीजां आ जांदियां ने फिर मुनकर नहीं होना चाहिए समका उन्होंने डट के आपां मुकाबला करना चाहिए गुरबाणी के नाल ना कि इधर उधर भटकना चाहिए महाराज ने इत्थे जपजी साहब का इसे करके महात्म दस्या
1: मन जीतन रण मैं धरा राज काज सुख
0: राज काज दे विच मैदाने जंग जान दे विच राजनीति दे विच बाणी तो हर जगह ही सहायता करती है जेड़ा मर्जी महाराज जी तो आपा मंग लईए
1: मिलने गिलने बंद मैं राजयोग उत्साई
0: बंद मैं बंद हुंदे रिश्तेदार रिश्तेदारां नूं मिलना गिलना वह तो आपां नूं पता ही कई चीजां दा भी जदों बरात आउंदी है उदों शब्द पढ़दे हम घर साजने आए बाणी पढ़दे हैं आनंद कारजां विच फिर लावां दा पाठ पहला कीर्तन हुंदा है महाराज कहिंदे जपजी साहब भी पढ़िया करो जपजी साहब का पाठ जिहड़ा है ये पढ़ना रिश्तेदारी च मिल जाना राजयोग दे विच कहण तो भाव कि एक चिंता मणी हुंदी है चिंता दूर करती है एक काम तेन गऊ है उहदे कोल कोई इच्छा कर लो पूरी करती है एक कल्प ब्रिछ है पर सतगुरु ने कहा कि इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हर जाक है बस है काम तेना काम तेन जपजी साहब दे बस विच ही है फिर आपां काम तेन नूं कहनूं देखना है जां कल्प ब्रिछ वल कहनूं देखना है जां किसे होर वल क्यों देखना है महाराज कहिंदे फिर भाई जिहड़ा जपजी साहब पढ़दा है उहदा तां सीधा ही मतलब है कि उहदियां सारियां इच्छावां चाहे वह रजोगुणी है चाहे वह सतोगुणी है चाहे वह भगती है चाहे वह योग विराग ज्ञान उम्र का वाधा मंगिया चाहे घर का कोई काम है चाहे परलोक का कोई काम है सारे कार्जा विच जपजी साहब की बख्शिश हुंदी है
1: इन कार्ज की अटक मैं पंच पचीसा जाप
0: हुण इन्हां कार्जा विच जिहड़ा अड़िका पै जांदा है सो इस करके कहिंदे ने मूल मंत्र दा ही मुख है कि मूल मंत्र दा जिहड़ा अभ्यास है ना वह तुसीं अभ्यास जां तां समां रख के करो बई रोज घट्टो घट्ट दो घंटे मूल मंत्र मैं पढ़ना है जां फिर नवे बंदे लई माला बई माला कुछ रखो बई मैं इन्नियां माला जिहड़ियां ने हर रोज करनियां ने घट्टो घट्ट 10, 11, 15, 20, 25 माला मूल मंत्र दियां अभ्यास वजों करनियां ने जे आपां थोड़ा करदे हैं मूल मंत्र ते आपां कम्मां दी इच्छा बहुत करदे हैं इस करके क्योंकि गृहस्थी दे कार्ज ही बहुत ज्यादा हुंदे ने तां ते सतगुरु महाराज कहिंदे मूल मंत्र दा अभ्यास जिहड़ा है वह थोड़ा ना करो हर वक्त पंजां प्यारिआं ने तां इही हुक्म कीता जद अमृत छकदे हैं भाई देखो अमृत वेले पंज बाणियां तां पढ़ लईआं हुण बाकी समा की करना सुखमनी साहब आसा दी वार ते चलो डेढ़ घंटा लग गया बाकी फिर कहिंदे मूल मंत्र ते गुरमंत्र उठदे बैठदे श्वास श्वास इन्हां दा जाप जिहड़ा करन नूं पंजां प्यारिआं दा हुक्म आपां नूं उही इत्थे दर्शाया वी हर वक्त मूल मंत्र दा अभ्यास करदे रहो
1: 36 जाप कर लाख अर्ध ते लाख
0: हुण इह जिन्ना कि कारज है कम देखिया जांदा कम है इन्ना कम है 5000 मूल मंत्र है 25000 दा जाप है 36,036 अखरा भाव पुरातन समय विच 36 अखरा नानक होसी भी सच तक है 25 अखरा जिहड़ा उह जाप गुरप्रसाद तक है इन्हां चीजां नालों हट के आपां इको ही गल करिए कि मूल मंत्र दा जिहड़ा अभ्यास है जिहड़ा पंजां प्यारिआं ने बख्शिश कीता है इहदा जे चलो जे तुसीं इह कहो भी इह तां बहुत ज्यादा सत हुंदा नहीं इन्ना तां फिर घट्टो घट्ट 5-6 माला रोज कर देनियां चाहीदियां जां 11 माला ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 11 ਪਾਠ ਜਾਂ 5 ਪਾਠ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो,

एक मिनट लिए शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

0: गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय
1: गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय।
0: पहले दो चार हफ्ते तीन दी पहलों की गल हो जिधर एले तो कथा खत्म करके गए फ्री मोड, एक बच्ची नाम सी मनजीत कौर आनके कहन लगी साडे घर प्रशादा छकन चलना है, घर विच विपता बड़ी पई, दुविधा बड़ी घर विच पई। दास ने बेनती की होया, कहन लगी बड़े दुखी हां, एक बार आनके अरदास करो। मैं क्या हुण समा नहीं, मेरी धीए फिर कदी आऊं, पर मैनूं इत्थे दस की होया तेरे घर विच, तू अमृत छकिया? मैनूं इतना लगदा वा कि तेरियां बीमारियां दा इक्को ही कारण है कि तू परमेश्वर तों बेमुख है, परमेश्वर तों किते मेरा गुरु कृपा करे, मेरे गुरु नानक वर्गे प्रचारक मिलन, ते कोई पुछे जी मैं बड़ा दुखी हां, ते मेरा गुरु नानक पातशाह आखे जय तन बाणी विसर जाए, तेरे दुखां दा कारण एहो ही हो कि तेनू परमेश्वर दा नाम भुल गया। उन्हें बच्ची नूं मैं बेनती की, मैं कहा धीए अमृत छगला गुरु वाली बन जा, नितनेम करिया कर। मेरे गुरु अमरदास महाराज पातशाह ने एक वचन किया, हर गाओ मंगल नित सखिए, बोलो हर गाओ। फिर एक बार प्यार नाल आप जी नूं पता लग जाए, हर गाओ मंगल एक दिन नहीं नित, रोज उठ के नितनेम करिया कर। हे सखी हे जीव आत्मा, फिर सोग दुख ना व्यापे, बाणी पढ़ के वेखो, सोग दुख तेरे घर कोई दुख कोई दलिद्र कदी आवे ही ना, तू रोज उठ के नितनेम करिया कर। कहन लगी बाबा जी अमृत ते मैं छकिया सी। मैं कहा फिर परवटे ते तेरे कट्टे ने, बेदबी ते तू रोमा दी कीती है, तू कह नहीं मैं अमर छकिया? कहिंदी जी ये तुहाडे प्रचारक ने सब कुछ करवाया। आर सुन लो हुण मैं जिहड़ा वचन कहन लगा आप जी नूं, मैं कहा जी प्रचारक ने करवाया? प्रचारक दा ते काम हुंदा है कि परमेश्वर दे नाल जोड़ना, टुटे हुए नूं कहना पे प्यारिया परमेश्वर दे नाल जुड़ जा। कहन लगी जी एस कनोगा पार्क गुरुद्वारे, ध्यान देना कनोगा पार्क गुरुद्वारा एले दे विच, चौंकड़े मार के सोरी तरह बैठो सुचेत हो के, कनोगा पार्क गुरुद्वारे एक कथावाच कथा कर रहा है। मैं कहा जी हुण भी? कहिंदी हां। मैं कहा जी ना की है? कहिंदी शब्द प्रकाश सिंह उहदा नाम, ध्यान दिओ शब्द प्रकाश सिंह उहदा नाम है, नखलोग दा रहण वाला है, ते ओ काला इलम जानदा है। आखो सतनाम श्री। मैं कहा जी काला इलम जानदा कोई गल नहीं, फिर काला ते काली दे राहत हुंदी, काला ते पाप दा वच किया।

0: आधार सत नाम नु आधार बनाओ, परमेश्वर की बंदगी आधार बनाओ। आओ हुण रीढ़ की हड्डी सिद्धि करो, समा दौड़ चलिया। मेरा सतगुरु कृपा करे कुछ समा नक की कुरुंबड़ी ते सुरत टका के अंदरले विचार बंद करके जप के वेखो, मेरे सतगुरु का अमृत डोलन लग पैंदा है अंदरों। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु
1: वाह गुरु। जप्या करो अमृत वेले उठ के, अमृत वेले खुराक खाया करो। सर्व रोग का औखद नाम बोलो, सर्व रोग का औखद सारिया बीमारियां दी दवाई जे सतनाम श्री वाहे गुरु। जेड़ा रब दा नाम है अवर अपाव सब त्याग गया, दारू नाम लिया छड़ दियो सारे अपा करने। अपन बड़े मिलदे ने ओ जी औलाद आखे नहीं लगदी, ते लागो गवांडी की सलाह देंदे की करो कोई उपा करो। अपा शब्द वरतदे आ ना इथे गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे सगल अपाव सब त्यागया अवर अपाव सब सारे अपाव करने छड़ दिते। आख्या की कीता फिर तुसीं

मेरा सच साहेब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी नानक बोले

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वडियाई जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इशा, सदा कुर्बान कीता गुर विटो जिस दिया ए